गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करने वाला है। जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है। सात जगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हैं तू उन्हां नू वंडन वाला है। साथ सकत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार छड़ के तेरे चरणों विच आया हां।

मेरी चोली किसी ने नहीं पड़ी, इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सहित बोलो श्री, इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है क्यों।

देख रहा फतेह गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह, साहिबे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाने नू मनन वाला है। सात सगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तो कितने दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते, दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख के चरणों के नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ये सौदा सस्ता किया है। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते

कौन है? पिता नूं शहीद करा दिता तां गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी। हिंदू धर्म की रक्षा की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई। आनंदपुर का किला उजड़ गया। 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हों सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर 4 बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर। सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ए अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मना दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दिया चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनू रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री अनेका ही नू साहब जी दी तलवार प्या शो प्राप्त होई। दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगा लंग गए। दुश्मन केरे नू तोड़ छड़िया, तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए भाई साहब भाई नंद लाल जी

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए। मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना कर दी हुई उसके मगर लग पई हाँ। हुण मैनू वो दाता मिल पिया। मैनू किसी की परवाह नहीं। भगत जी कहते ने

सियाना होता है, पढ़िया लिखिया होता है, पंडित का मतलब स्कॉलर होता है, विद्वान है करनी कोई नहीं, गल्लां बड़ियां कर सकता है। ऐसे बंदे कोलों भी किसी वेले जीवन जांच मिल जाती, लेकिन किसी नूं भोले पा हर किसी नूं ऐसे बंदे कोलों प्रेरणा नहीं मिल सकती। एक गुरु पूरा नहीं अधूरा है, जो विद्वान ता है करनी नहीं, यह पंडित गुरु है। कि महाराज दूजा गुरु केड़ा है, होर केड़ा गुरु है? धन गुरु नानक कहन के दूजा होंदे ने अवधूत गुरु, जिदे कोल करनी ता है कहण जोगा कुछ नहीं, कहना आउंदा ही नहीं। या ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी होए ने भजन बंदगी करके जो कुछ पल्ले पै गए हैं उन्हें लैके बह जाते, कहंदे ने दस्सिया पता नहीं कुछ निकल जाएगा। गुरमत्त दी थां कोई नहीं, गुरमत्त कहती है सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरा नाम जपाओ। साहब कहणगे कुछ अवधूत गुरु होंदे ने, भजन तां बड़ा करदे, भगती तां बड़ी है, कहण जोगे कुछ नहीं, या तां गुप्त हो गए ने, गुम हो गए ने, या कहण दा चज नहीं आउंदा, यह भी अधूरा गुरु है। इहदे वल वेख के किसी नूं अपने आप प्रेरणा मिल जाए, शौक आ जाए कि जिहड़ी मस्ती इहदे नेत्रां विच कदे मैनूं भी मिल जाए, जो मौज इस नूं प्राप्त है कदे मेरे हिरदे विच भी टिक जाए, वेखा वेखी किसी नूं शौक आ जाए ते गल वखरी, उह दसण जोगा कुछ नहीं। कह लगे महाराज वह भी अधूरा गुरु, वह भी अधूरा गुरु, फिर पूरा गुरु केड़ा होया? संत गुरु नानक कहन लगे पूरा गुरु वो है जो आप करना जानता है दूजे नूं कराउणा जानता, जो आप कमाउंदा है दूजे नूं कह सकदा। चरनी पै गया, कहन लगे महाराज फिर यह तां तुसीं करो बख्शिश, तुहाडे बिना ऐसा गुरु कौन हो सकता है जो कहण दा ढंग भी जानता होवे ते कमाउणा भी जानता। संत गुरु नानक कहन लगे ऐसा नहीं, तुहाडे सारिआं विचों हर कोई पूरा गुरु बन सकदा। जिस बंदे कोल कमाई आवेगी, सोची आवेगी, ते शौक होवेगा कि जो कुछ मैनू मिलिया दूजे नूं भी प्राप्त हो, चाह होवेगा कि जो मैनू लब्भा है दूजे दी झोली भी पै जावे, हर वह बंदा जिहड़ा है पूरे गुरु के मार्ग से चल के इस काम च सफलता पा सकता है। बाकी यह गल वखरी, कहा लैना सौखा है, गुरु कहाउण वाले ही बड़े बैठे ने, इसे कहाउणा तो बड़ा ही सौखा हो गया। जदों मरदमशुमारियां होंदियां, जदों गिणतियां होंदियां ने, बकायदा कालम बनिया है, धर्म की है सिख, बड़ी शान नाल कहाउणे आ, सिख कहा लैंदे, पर साहब कहिंदे ने निरे कहाउण दी गल ना करी, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जिहड़ा अखाउंदा है मैं सिख हां, उहदे ते इक फर्ज आयद हो जांदा है कि वह मुकम्मल कमाई वाला हो, पूर्ण कमाई वाला हो, ते ना केवल आप पूर्ण कमाई वाला होवे बल्कि दूजियां नूं कमाई दी जाच दसण जोगा भी। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, भाई साहब भाई गुरदास जी दा शब्द आपां पढ़ रहे सां, उहनां दी पौड़ी है, गुरसिखां शाबाश जन्म सवारे, धन हन ओह गुरसिख जिन्हां ने अपना जीवन सफला कीता है गुरसिखी दे मार्ग ते चल के। गुरसिखां रहे रास गुरु प्यारे, जिन्हां ने गुरु नूं प्यार कीता है, गुरु की गल सुनी है, गुरु का उपदेश सरवण कीता है, गुरु नाल सांझ पाई है, उन्हां दा रस्ता बड़ा सच्चा है, उन्हां दा मार्ग बिल्कुल ठीक है, राहे रास ते चले ने। गुरसिखां रहे रास गुरु प्यारे, इत्थे भी भाई साहब कहिंदे, साहब कहिंदे ने ऐसे लोग जीवन विच सफलता प्राप्त करदे होए पापियां नूं पार उतारन जोगे हो जांदे, पापियां नूं पतता नूं पवित्र करके अपने मार्ग ते लाउण जोगे हो जांदे, ते जिहड़े इतने जोगे हो जाण, महाराज कहिंदे ने जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरा नाम जपा, मैं उन्हां दे चरणां दी धूड़ मंगना। ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗੱਦ ਪਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ

जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दे। मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखां जिहड़े तुरे होए ने पहुंचे होए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय किए हुए मंजिला मारदे तुरे जा रहे ने जे ते उह जिहड़े मंजिला मारदे जा रहे ने साहिब कहिंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल उह की करदे ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले। प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारने विच फर्क है। जिसने सूरज चढ़दा है उसनू डान कह देते हैं लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला। सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर पैंदा सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना कम नबेड़ दे। जिहड़े इस मार्ग से तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही भाई साहब कहिंदे ने ऐसे लोग जिहड़े गुरु मार्ग से अमृत वेले तुरदे ने मेरा तो जी करदा है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा। नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख सिख सिर दी चोटी नख सिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण के चरण पैवारी कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तो निछावर कर दे वारने कर दे। कहते ने अग्न जलाए हुन पीसन पिसाए तेह चक्की च पी दे अग च भुन दे लै उडे पौन होए अनेक प्रकारिए तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दे उस हवा विच मेरे शरीर की खाक उड़ जावे। जिथे कहते ने जत कत सिख पग धरे गुरपंथ प्रात सवेरे सवेरे जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणा वाल तुर के आउंदे ने जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिखां दे चरण गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणा वाल गुरु द्वारे वाल वधदे ने ताहू ताहू मार्ग मैं पसम को डारीए मेरे शरीर की पसम जेड़ी उन्हां उन्हां रस्तियां ते फैला दे उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दिओ मेरे शरीर नूं सुआह करके पसम करके तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे उन्हां रस्तियां ते पैदल चलण वालियां दे चरणां नाल मेरा प्यार बनिया रहे मेरी लिव लगी रहे दया के दयाल मोहे पतत उधारीए ताकि उन्हां दे चरणां दी खाक प्राप्त करके मेरे शरीर दी खाक उन्हां दे चरणां दी छोह प्राप्त करके मैं पापी पार उतर जा मेरा पापी दा उधार हो जा। कैसी प्यारी जीवन जाच है उत्तम करे पलके प्रभाती अमृत वेले उठे उद्दम करे आलसी ना रह जावे क्योंकि आलसी दा निरा रोगी किसे पासे भी कामयाब नहीं हो सकता। गुरसिख जीवन दे हर मैदान विच सफलता नूं प्राप्त करने वास्ते उद्दम करदा और महाराज दी पावन बाणी च सुचेत कराया उद्दम करेंदिया जीओ तू कमांदिया सुख पुंच ध्यानदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत उद्दम करके जी उद्दम करके कमाई भी कर ध्यान करके भगती करके प्रभु दे नाल सांझ भी पर पा लै इधर भी मिलाप कर ले।

हर पुरुष प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सा

दिवस है अभियान शब्द जदों या पासों ही ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर पटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे आंदे नाल वसदा है ओदी निगाह तो कोई दूर नहीं हो सकता है।

और जिन्ना ने इस प्यार नू जान लिया उन्हां दा जीवन दुनिया दे राग रंगा तो उत्ते हो जाता है। क्योंकि साहिब जी बयान करते हैं जिन्ना ने नाम दा रस पीता उन्हां नू दुनिया दे झूठे रसां दा फिर मुताज नहीं होना पैंदा। आओ विचार करिए जो इस शब्द की भावना है जो इस शब्द विच प्यार है उस प्यार वल आपा अपना मन जोड़ी रखना है और विचार करिए कि जिन्ना ने प्यार किया उन्हां दे मन दी तड़प किस तरह दूर होती है और किस तरह उन्हां नूं

करके याद करने ए ननकाना साहिब हराए पोई जी तलवंडी जिस जगह तन गुरु नानक साहब ने अवतार लिया हराए पोई जी तलवंडी का नाम फिर ननकाना साहिब पै गया। आओ अज इस ननकाना साहब वाल अपनियां बिरतियां ले चली। धन गुरु नानक साहब की सूरत अपनियां अखां विच वसा के उन्हां दे चरणां दा ध्यान धर के उन्हां दे इस प्रेम गाथा का आप आनंद माणीए कि किस तरह प्रेम करन वाले जद मिलाप ना होवे ते तड़पदे ने जद मिलाप हो जाए तो फिर वो आनंद बयान नहीं किया जाता। ननकाना साहिब धन गुरु नानक साहब का घर सवेर का वेला रसोई दे विच गुरु नानक साहब जी के पिता मेहता कालू जी बैठे ने कोल ही गुरु नानक साहब के सत्कार योग माता माता तृप्ता जी बैठे हुए और माता तृप्ता जी अपने पति मेहता कालू जी नू कह रहे हैं मेरे नानक का जन्मदिन आ रहे है मेरे नानक दी वरे गंढ है कि मेरा नानक आवेगा या हर साल दी तरह ए जन्मदिन भी उड़ीकां विच लंघ जाएगा। बुढ़ा बाबा कालू अखां विच अथरू भर के कहन लगे तृप्ता इन्ना लाडला पुत्र है मेरा नानक ओनू दुनिया का फिक्र है दुनिया के उधार वास्ते घर बार दे सुख छड़ के दुनिया नु सुख देन वास्ते तुरे है पर साड़ियां अखां ओनू देखन वास्ते तरसदियां ने। हर साल इस दिन की उड़ीक करदे हां कि मेरा नानक आवेगा पर हर साल ए जन्मदिन दा दिन लंघ जांदा है अथरू केरदे हैं उड़ीकदे हैं। माता तृप्ता जी कहन लगे पर इस वारी इस तरह महसूस होंदा है कि जिवें मेरा नानक जरूर आवेगा इस वारी अपने नानक दा जन्मदिन अपने पुत्र दा जन्मदिन इसे घर विच मनाया जाएगा।

बीती, दोपहर हो गई। मेहता कालू जी वेड़े विच बैठे, अखां बाहर दरवाजे वाले ने। इन्ने नू मेहता कालू जी आवाज मारदे ने, गुरु नानक साहब जी दे माता अपनी धर्म सुपत्नी तृप्ता, आओ देख मेरी लाडली थी, मेरे नानक की वड्डी भैन नानकी आ रही है। नानकी नहीं पहला पहचाने आसी, नानकी नहीं सानू के आसी कि ये अर्शां तू आया है, इसनू पुत्र ना समझो, ये आप आया है। तृप्ता ओ देख नानकी आ रही है, ते मैनू जापदा है जे नानक दी प्यारी भैन आ रही है ते नानक भी जरूर आवेगा। मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति

जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और पज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुकदे।

आंखों वारी बन जा, खनिए बन जा, कौ साहिब के नावे ऐ परमेश्वर, मैं तेरे दुवारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नू मिल के अपनी माता तृप्ता नू गले लग के मिले, तेनू गलना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे, जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी के पैरां ते मत्था टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने, पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने, जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे, जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है, भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, बहार ने आना होवे कुंजा दिया डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए, एक दरख दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ये शब्द गाण लग पे, अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए, जो रते सह अपने तिन पावे सब होए। ऐ बादशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती, असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं, तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे राय पोई दी तलवंडी दा राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने एक सद लाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैं।

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं जिहदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है चंगा पति बनना जरूरी है चंगा पुत्र बनना जरूरी है चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है जेड़ा चंगा पति ना बन सके चंगा पिता ना बन सके जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके साथ संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता ओ ना सिख हो सकता ओ ना मुसलमान ना हिंदू ना ईसाई वो किसी गिनती विच नहीं क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के अस भी अपने मना विच प्यार रखी, साढ़े मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना है।

भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिके आ उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़ है। ता जवाब दिता वो सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

दसन जावा मैं मन की हालत किथे जाके कूकां ते पुकारा तेरे दर तो बिना कोई आसरा नहीं मेरे मालिक रहमत करो ते जोड़ लवो टुटे होए नू विछड़े होए नू अपने चरणां नाल जोड़ के सतसंगत दा आसरा बख्शिश करो इत्थे मेरा मन टिक जाण।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा, ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। तेरो जन होए सो एकत डोले, तीन भवन पर छा जा, हाथ

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नु मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है। वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नु एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उन्हां दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

कितने जन्म मनुख भक्ति करे, जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आखिया

0: अंधले की देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों हुंदा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दास दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरि नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

अंदर कौतक वरता रहे। ड्यौड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन नूं चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक की रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे कोलों नहीं सहन, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। पातशाह मैनू तुसी आग्या दिओ, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे, भाई पुराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कितों पै गई, तू फना करन दीआं ताकतां कितों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहिंदे ने, भाई पुराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दीआं ताकतां तेरे कोल आईआं ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवा मैं नहीं कर सकता। नहीं भाई पुराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रज़ा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पुराणे दे मोढे ते रखिया। उह जिहड़ी अंदर जप तप की शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दी, ठंड वरता दी। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालक की बख्शिश की हुई, धन गुरु अर्जन साहब की बख्शिश की, सहनशीलता सदका फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं की थी, सी नहीं उचारी, वाहगुरु वाहगुरु जपदिया हुआ बेसुरती तक तो पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जाए ना तो फिर हाए नहीं मुंहों निकलती, शुक्र मुंहों निकलता है।

कर देने, पता नहीं से कि इस तरह परमेश्वर का सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे, या कोई ब्याह होवे।

अराज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

हुकम सी परमेश्वर दा परसा संगत हुकम मनना कोई सौखा नहीं। ए भी सच है एक दिन मरना है, पर ए भी ता सच है कि विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। इस दुख दा उन्हों पता है जिदा कोई मरे, क्योंकि गुरु साहिबा ने इस दर्द नूं समझिया। अगर किसी औरत दा पति मर जाए, मां दा पुत मर जाए, उस दुख नूं गुरबाणी विच साहिब जी बयान करदे ने, ओ मां जिहदा पुत्र जिन्हों ने बड़े चा नाल पालिया। कहिंदे ने हर मां बाप दी इच्छा हुंदी साडा पुत्र वड्डा होवे, जदों असी मरीए ये सानू मोढ़ा देवे। पर ऐसे मां बाप नूं जदों ये पता लगे कि साडा पुत्र मर गया, ते उन्हां दा दुख की हो सकदा है। कबीर साहब जी बयान करदे ने, देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई। वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है, जिस पुत्र नूं पालिया जानदा तां मेरा समां सी, उस पुत्र नूं मरिया देखिया। जिन्हों चार भरा आए चुक के लै तुरे, एक पासे मां रो रही है, दूसरे पासे लट छिटकाए तेरिया रोवे। तेरिया औरत नूं के एक पासे वाल खिलार के औरत पई रोंदी है, जिदे सिर दा साईं चला गया, ओदे दुख नूं कौन समझ सकदा है। साहिब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने, औरत भी पति नाल ही सौंदी है। जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने, पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है। साहिब जी

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतां दे बारे साहब जी कहते ने तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन भी कुछ नहीं।

दूर कर दिंदी इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी का भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहते ने यह भी सच है मरना जरूर है यह भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इस वास्ते ये बाणी दिती है कि परमेश्वर का सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ये समझ सको ये हुक्म सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जाना है ताकि दुनिया दे नाल इन्ना मोह ना करिए।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसी ना किसी ते हुक्म चलावां, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। यह भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं इह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल दी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्ता को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

तेरा अंत ना पाया, तेरा अंत ना पाया। जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया सुख मच प्याल जी। हवारी हवार ने कुर्बान तेरे नाम नु, तू संसार पाया सिरे सिर संदे लाया।

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग भौरन गुरता।

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने जेड़ा आके उन्हें सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना तावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए